0: सुनौले म आफ्ना बैराग्य गाउँछु बस आज बनाउले
1: काके सागो चुनु चुनु जित्ता भड्कुनाले मेरा साई पराया भया।

0: Media.
1: Extreme energy drink.
2: Radio Vidi FM. Radio Vidi FM.
3: Radio Vidi FM. Antana Betuplo Cha, Vexi Duitoplo, Sat Megahertz.
4: Extreme energy drink.
5: Time take. अहिले ठीक 11 बजेको छ
6: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: पाइन्छ। फोन नम्बर 083-590-872। सम्पर्क फोन नम्बर 083-521-956 र मोबाइल 98-4-50-430।
1: लौ है हजुर, सिरिस एग्रुभेट है, सिरिस एग्रुभेट।
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 / 102.7 मेगाहर्ट्ज।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एरी एफ एम 98.6 हर्रे बाट 102.7 वीरेन्द्र नगर सुर्खेत बाट
1: एउटा इरानी चरा बुलबुल कम्युनिकेशनको रात्रि प्रस्तुति बुलबुल बुलबुल बुलबुल।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: शिव शंकर भोलेनाथ गर्छौं पुकार शिव शंकर भोलेनाथ।

हो संपूर्ण रूप में प्रश्न करी सके पची अब सप्त दश अध्याय सत्र अध्याय प्रादुर्भाव कर दिनु भो लौ त मेरो परमात्मा हजुरले संपूर्ण बताई सक्नु भएको छ।